0: ही नहीं, इस 120 ही रहना चाहिए। जो ट्रेंड अजकल फार्मेसिया वालों आम तौर से डॉक्टर की जेरे निगरानी चलाया जा रहा है, इनकी मिली भुगत न चलाया जा रहा है, मिली भुगत न चलाया जा रहा है कि वो जिहड़ियां लिमिट्स ने मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ दियां उन्हां नूं घटाया जा रहा है। और उन्होंने घटाने के नाल की होया कि ना भाई 120-80 की ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 110-70 चाहिए। कारण की है? कारण यह है कि जिहड़ियां दवाइयां असीं ब्लड प्रेशर वास्ते बना रहे हैं, इंडस्ट्री बनाई जा रही है, तो उसका वर्तनिया कित्थे आ? जे 120 ते भी रोग सेट हो गए, जे ते 130-35-40 वाले रोग ने सी उन्होंने आख्या बीमार है, वो दवाइयां खाणगे। हां जी, पर जे असीं आख्या वी ना भी तेरा 120 चाहिदा है, ते बहुते सारे लोग इस घेरे च आ जाणगे, दवाइयां खाणगे। पर असीं आख्या नहीं, हजे जिन्नी इंडस्ट्री च दवाई बन रही है यार, उन्नी तो लग नहीं रही, दवाई तो होर इस्तेमाल होनी चाहिए, प्रॉफिट तो होर होना चाहिए। तो मेडिकल साइंस की कह रही है, सॉरी मेडिकल साइंस का नाम ना लवा, मैं बिजनेस का नाम लवा, बिजनेस का ट्रेंड है गया, और वो डॉक्टर नाल मिलके हो रहा है भी भाई नहीं, ब्लड प्रेशर 110-70 रखो। मतलब की होया, जे 120-80 की रेंज में आने वाले सी उन्होंने भी हेटा होर लोग दवाइया लग गए। यही हालात ही शुगर का हो रहा है, यही हालात ही कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है कि असि उन्होंने लिमिटा इनिया ज्यादा घटा रहे हैं कि बहुते साडे जिहड़े लोग ने दवाइया लग जाए, और उन्होंने दवाइया लाने के वास्ते असि ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे कहने तो भाव यह भी इस ट्रेंड के मुताबिक असि गल एन्यूरिज्म की कर रहे हैं। याद ही रखना, मैं अपना टॉपिक भूलता नहीं हाँ, असि एन्यूरिज्म की गल कर रहे हैं। हुण वधदी हुई इस इंडस्ट्री के नाल होया की आ, ब्लड वैसल्स जिहड़े ने असीं उन्हां नूं बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और ब्लड वैसल फटने शुरू हो जाते हैं, खून दी नाड़ियां जिहड़ियां ने वो रैप्चर होने लग जांदियां ने, उन्हां नूं इन्नी एनर्जी नहीं मिल रही जिदे करके वो अपने आप अपनी एनर्जी पूरी करके सरवाइव कर सकन। ते तुसीं कई लोकां दे तुसीं देखदे हो हत्थां ते बाहां ते धब्बे पए हुंदे ने ब्राउन कलर दे, कलेजी रंग दे, हांजी, और कईआं दे ब्लैक हो गए हुंदे ने। हुंदा की है, जे खून बाहरले पासे डुल्या होवे तां तुसीं वेखो वो लाल हुंदा है, थोड़ी देर बाद अगर तुसीं उहनूं वेखो ते उहदा कलर ब्राउन हो जांदा। कारण की है कि ऑक्सीजन इवैपोरेट हो गई, ऑक्सीजन हवा च मिल गई। यही कुछ ये हुंदा है स्किन दे अंदर, जदों तुहाडियां खून दीआं नाड़ियां फटदीआं ने, ब्रीक नाड़ियां जिहड़ियां ने, और ब्रीक नाड़ियां दे फटन दे करके खून अंदर टिशू स्पेसिस दे विच आ गया, जिहड़ी उहदे विच ऑक्सीजन सी ओह टिशू स्पेसिस ने चूस लई, ते बाकी की बचा वो जिहड़ा ब्राउन कलर, वो हुण ब्राउन कलर हौली हौली ड्राई हो गया, और वो थानू इस तरह की शैडो देगा जिहड़ी आम तौर ते लोकां दे हत्थां ते तुसीं वेखदे हो। और ये की है, एक्वायर्ड बीमारी है, आप सहेड़ी जिहनू कह लो पंजाबी च, कह सकदे आप सहेड़ी, ये आप सहेड़ी है, भावें डाक्टरां दे इस ट्रेंड दे करके आ, भावें फार्मेसियां दे इस एडवरटाइजमेंट दे बिजनेस ट्रेंड दे करके हैगा आ, वी वध तों वध दवाइयां जिन्नियां भी फैक्ट्री च बनदियां ने उन्हां दा इस्तेमाल किया जाए, जिदे करके साडे शरीर दे विच अपनी जिहड़ी एनर्जेटिक पावर हैगी है रिप्लेस करन दी सैलां नूं, ओह नहीं बन रही, ओह नहीं हो रही, और असीं आर्टिफिशियली एक चीज नूं आर्टिफिशियली चला रहे हां, ते आर्टिफिशियली चलाउंदिआं होइआं ओहदे विच साडी उन्नी रिपेयर नहीं हो रही, जिदे करके खून दीआं नाड़ियां फट जांदीआं ने। और ये ओह साइन ने, इस दी दवाई मैं इस करके कर रहा हां कि ये ओह साइन हन जेडे बाहरों विजिबल हुंदे आ तुहानूं, जदों ये साइन दिसण दे दा मतलब ये आ कि ब्रीक नाड़ी ते तुहाडियां फट गईआं ते तुसीं वेख लिया स्किन दे उपर धब्बे पै गए आ, और ओह धब्बे जिहड़े आ अल्टीमेट कलेजी रंग दे हो गए आ, कलेजी रंग तों काले रंग दे हो गए, स्किन दे उपर दाग पैणे शुरू हो गए ने। इहदा मतलब किसी अंदर वाले मेन ब्लड वैसल दे विच वी, किसी होर मेन नाड़ी च वी ऐसा हो सकदा है ना, जे मेन नाड़ी च ऐसा हो सकता है ते ओह किसे वेले वी तुहाडे वास्ते सीरियस हो सकदा है। सो इस गल नूं सुचेत होण वास्ते मैं थानू कहा सी ना भी कोई भी गल असंचेत नहीं हुंदी, पुछदे ना कि हार्ट अटैक हो गया या किसी नूं स्ट्रोक हो गया, हाए हाए चंगा भला सीगा हुण तां बाहरों आया, अचनचेत ही हो गया। अचनचेत शरीर दे विच कुछ नहीं वापरदा।
1: बिलकुल बिलकुल डॉक्टर साहब,
0: हां जी
2: बिलकुल, मैं कहा बिलकुल इसी तरह हुंदी है जी।
0: हां, असीं एक्चुअली की आ कि जिहड़े साइन एंड सिम्पटम सानू शरीर दे रहा हुंदा है ना, असीं उहनां नूं इग्नोर कर रहे हुंदे आ, असीं उहनां नूं इग्नोर